राजस्थान री धरती रमाईने पग पग में वीरा रीशान घणी प्यारी लागे बोली प्यारी आपणो रंग बिरंगो यो है राजस्थान। तो यो थो राजस्थानी गीतारो कार्यक्रम गोखड़ा और अब ख्याति भाई सा ने इजाजत देवो सा अणी कार्यक्रम से। अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम।

दिल जब किसी की और हो जाता है ना, जब दिल मन ख्यालों में खो जाता है किसी के और दिल की कलम से, शायर की शायरी शायर बन जाता है।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: AIR at 90.
1: आइए सुनते हैं रूप कुमार राठौड़ की आवाज में ये मधुर गजल।

0: Akashwadi at 90.
1: सुगम संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी उदयपुर से ही बोल रहे हैं। मीडियो वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत के सुहाने सफर पर और सुनते हैं दिलकश तराने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत आपके लिए, और कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति मोहम्मद अजीज और साजना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है खुदगर्ज़।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में खुदगर्ज फिल्म का ये खूबसूरत तराना अभी हमने सुना। फिल्म संगीत कार्यक्रम लेकर आए हैं हम आकाशवाणी उदयपुर से।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, अभिजीत और नीरजा पंडित की मधुर स्वर में। खूबसूरत फिल्म का ये खूबसूरत तराना।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कश्मीर की कली इस फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना। आइए सुनते हैं अगला गाना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में हिना फिल्म से।

हम फिल्म का गीत अभी हमने सुना मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की स्वर में। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला नगमा। हम हो गए आपके इस फिल्म से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो।

0: अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में हम हो गए आपके। इस फिल्म का गीत अभी हमने सुना, आइए सुनते हैं अगला गाना। उससे पहले ये संदेश।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना,
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हम साथ साथ हैं इस फिल्म का नगमा अभी हमने सुना कविता कृष्णमूर्ति, कुमार शानू, अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं प्रेम प्रतिज्ञा, इस फिल्म का गीत आशा भोसले और बप्पी लहरी की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में अभी हमने सुना ये प्यारा सा गीत प्यार झुकता नहीं इस फिल्म से। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं नैया फिल्म से।

यूं ही सलामत रहे, हंसते गाते गुनगुनाते रहिए, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, खुशियां बांटते रहिए, खुश रहिए। फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र, सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नैया फिल्म से यशोदास की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत अभी हमने सुना। चलते चलते बस यही कहते हैं, जन्मों जन्मों तक आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे, खुशियां आपके जीवन में हर दिन नए रंग भरे। दुआ है रब से, दुआ है रब से आपका और हमारा रिश्ता

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है। उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकलने वाले ये जुलूस और ताजिये रात में करबला में सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक रस्में अदा की जा रही हैं। यहां दुआ, फातिहा और नियाज का आयोजन हो रहा है। जालौर में मेहंदी की रस्म अदा कर ताजिए मुहर्रम पोल से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए बड़ी पोल पहुंचे हैं। यहां से इन्हें करबला के मैदान में ले जाया जा रहा है। कई स्थानों पर छबीलें लगाई गई हैं। सभी जिलों में जुलूस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से बैनर और पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आम जन से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। देश को

0: पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारी बहनों सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: जिसने हर कठिन राह को आसान बनाया है, अपने हौसलों से नया आसमान बनाया है। उस नारी के सम्मान में सजा है आज ये मंच, जिसने अपने कर्मों से जग में नाम कमाया है। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आप सभी को महिला जगत कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आइए नारी शक्ति, उसके संघर्ष, उपलब्धियों और प्रेरणादायक योगदान को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और मैं हूँ डिंपल श्रीमाली।
1: और मैं हूँ दीपिका पूर्बिया।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ आपने हमारी नारी शक्ति के लिए बोली है। और नारी शक्ति होती ही एक शक्ति का रूप है, जिसके कारण पूरा समाज परिवर्तन करने की एक अलग ही उनमें शक्ति होती है। तो आज हम क्या क्या जानकारी हमारी शक्ति के लिए लेकर आए हैं?
0: आज हमारी सखियों के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हम उन्हें बताना चाहते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है नशा मुक्त समाज की आवश्यकता।
1: बिल्कुल,
0: आजकल समाज में जो नशे की लत जो बढ़ती जा रही है युवाओं में, तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म करनी है हमें, और ये हमारा ही दायित्व है कि हम इसे ख़त्म करें। सामाजिक अभियानों में महिलाओं की भूमिका, जिस नशा मुक्त समाज की स्थापना में भी महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत ख़ास है, और विविध जो अलग अलग कार्यक्रम हैं जहाँ पर महिलाएं अपना योगदान दे सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे।
1: और बिल्कुल, हमारी सखियों को आज बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है, यानी नशा मुक्ति की बात तो करेंगी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ में बताएंगे कि मानसून पूर्व कपड़ों की देखभाल किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, तो उस मानसून के लिए हम पहले से तैयारी कैसे रखें, ये जानकारी आज हमारी सखियों को हम देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी।
0: बिल्कुल, नशा मुक्त समाज की आवश्यकता जो है सखियों आज का विषय है। नशा मुक्त समाज की आवश्यकता, नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और देश के विकास को भी प्रभावित करता है। और आज के आधुनिक जीवन में अनेक लोग तनाव, गलत संगति या जिज्ञासा के कारण नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उनके जीवन की सबसे बड़ी आदत बन जाती है। और आज के समय में युवाओं के बीच नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रचलन गंभीर चुनौती बन चुका है। कई बार तो लोग तनाव, गलत संगति, फैशन या जिज्ञासा के कारण नशे की शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है।
1: बिल्कुल, नशे का सबसे पहला दुष्प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तंबाकू, शराब और अन्य मादक पदार्थ शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं। और सखियों, इनके सेवन से हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर तथा मानसिक विकार जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो नशा व्यक्ति के

0: सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है, जिससे उसके निर्णय लेने की शक्ति कमजोर होती जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपिका। और नशे का प्रभाव केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है, इसका सीधा असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। परिवार में तनाव बढ़ता है, आर्थिक समस्याएं भी आ जाती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है। कई बार परिवार केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में आ जाता है और बच्चों के भविष्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा डिंपल जी आपने, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से देखें तो नशा अपराधों और दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। नशे की हालत में वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाएं तो बढ़ती हैं, पर कई बार चोरी, हिंसा और अन्य आपराधिक अपराधों के पीछे भी नशे की लत एक महत्वपूर्ण कारण होती है। और इस प्रकार नशा समाज की शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है।
1: सखियों किसी भी राष्ट्र की शक्ति, उसके स्वास्थ्य और जागरूक नागरिक होते हैं। यदि युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ जाएगा तो देश का भविष्य प्रभावित होगा। इसलिए नशा मुक्ति केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। हमें युवाओं को सही दिशा देने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें खेल, शिक्षा तथा रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल, नशा मुक्त समाज के निर्माण में परिवार, विद्यालय और समाज, सरकार सभी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता को तो बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को विद्यार्थियों की जागरूकता फैलानी चाहिए और समाज को नशे के विरुद्ध सकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए ही। साथ ही जो लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं उन्हें तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग और उचित परामर्श की आवश्यकता तो होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो सखियो, आइए सभी संकल्प लें कि स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण ही हमारे उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।
0: बिल्कुल सखियो, ये तो हुई जानकारी नशा मुक्त समाज किस तरह से निर्मित हो सकता है, क्योंकि हमारे थोड़े से प्रयास से हम अपने पूरे समाज को सुधार सकते हैं और हम खास तौर पे महिलाओं का इसमें योगदान पूरा होना चाहिए, तभी हम अपने परिवार और समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं। तो सखियो, ये तो बात हुई हमारी नशा मुक्ति की, लेकिन अब चलते हैं और सखियों का मनोरंजन कराते हैं, सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो सखियों, नारी केवल एक शब्द नहीं, नारी केवल एक शब्द नहीं, साहस, त्याग और ममता की पहचान है। जिसने हर युग में रचा इतिहास, वही भारत की सच्ची शान है। बिल्कुल, महिलाओं ने हमेशा हमारे देश के लिए बहुत ही संघर्ष वाले काम किए हैं और इतिहास भी रचा है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सखियों कि सामाजिक अभियानों में महिलाओं की क्या भूमिका रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी ऐसी अभियान हैं और बहुत सारे ऐसी सामाजिक विषय हैं जहां पर महिलाओं की भूमिका की ज़रूरत है। किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो। और आज महिलाएं केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे अनेकों अनेक विषय हैं और अभियान हैं जहाँ महिलाएँ नेतृत्व कर रही हैं।
0: बिल्कुल, और सामाजिक अभियानों का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना और समाज की समस्याओं का समाधान करना होता है। इन अभियानों को सफल बनाने के लिए महिलाओं की अत्यंत भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। वे अपने अनुभव, संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से लोगों को जोड़ती हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती भी है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। महिलाएं वे गांवों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय निर्माण और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे अनेक अभियानों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी ग्रामीण महिलाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और समाज के विकास को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज महिलाओं ने गाँवों से लेकर महानगरों तक सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा बन गई हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो महिलाओं का योगदान सराहनीय है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसे कार्यक्रमों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती

0: है वे अपने परिवार और समुदाय को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने की प्रेरणा देती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही कहा डिंपल। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इतिहास में महिलाओं ने अद्भुत योगदान का साक्षी रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी वीरांगनाओं ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज भी अनेक महिलाएं समाज की सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बनी हुई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस प्रकार बात करें तो महिला अधिकारों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी समाज में नई सोच विकसित कर रही है। वे बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर लोगों को जागरूक करती रहती है।
1: बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी न केवल जागरूकता तक सीमित है, वे स्वयं समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। आज अनेक महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में समाज में सेवा कर ही रही हैं।
0: सच कहा। हालांकि आज भी कई महिलाओं को सामाजिक रूढ़ियों, असमानताओं और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इसलिए समाज का यह कर्तव्य है कि महिलाओं को समाज अवसर, शिक्षा और सम्मान मिले ताकि वे सामाजिक अभियानों में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।
1: बिल्कुल सखियो, समाज में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं बल्कि हम सभी की है। जब महिलाएं और पुरुष मिलकर सामाजिक अभियानों में भाग लेते हैं तभी एक जागरूक समाज और विकसित समाज का निर्माण होता है। तो सखियो, ये तो बात हुई कि हमारी महिलाओं की क्या भागीदारी है अभियानों में, और हम आगे बढ़ते हैं और करवाते हैं आपका मनोरंजन, सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बिल्कुल सखियों, बहुत ही प्यारा सा गीत था। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, जो कि आज 26 जून को मनाया जा रहा है।
1: इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के प्रति जागरूक करना तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देना है। आज के इस विशेष दिन हम बात करते हैं कि नशा हमारे जीवन और समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल सखियो, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। तंबाकू, शराब, गुटखा, सिगरेट और अन्य मादक पदार्थ धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर और मन दोनों को कमजोर कर देते हैं।
1: नशे की लत से व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, परिवार में तनाव बढ़ता है और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। कई बार नशे के कारण अपराध, सड़क दुर्घटनाएं और हिंसा जैसी घटनाएं भी सामने आती है।
0: बिल्कुल, सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि आज के समय में कुछ युवा भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। यह उनके भविष्य, शिक्षा, करियर के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
1: लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि सही समय पर जागरूकता और सहयोग मिले तो नशे की लत से बाहर निकला जा सकता है और परिवार का स्नेह, अच्छे मित्रों का साथ, शिक्षकों का मार्गदर्शन और समाज का सहयोग किसी भी समस्या से बचा सकता है।
0: बिल्कुल सखियो, अगर अक्सर हम सोचते हैं कि वो बच्चे कैसे नशा कर सकते हैं जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं होता है, परंतु नशा करने के लिए सिर्फ एक मादक पदार्थों, पेट्रोल, गंध आदि ऐसे ब्रेड के साथ विक्स और झंडूबाम जैसे सेवन करना, कुछ इस प्रकार के नशे भी किए जाते हैं जो कि बेहद खतरनाक है।
1: मैंने पहली बार सुना कि ब्रेड के साथ में इस तरह का विक्स और जंडूबाम जैसी चीज़ें भी लोग नशे के रूप में लेते हैं, तो ये बहुत ही
0: मतलब
1: खतरनाक तरीका
0: उनको,
1: है
0: बच्चों
1: नशे
0: को एक
1: का।
0: लत लग जाती है और उसका फिर वो सेवन करते ही रहते करते ही रहते। हम अगर ध्यान नहीं देते तो वो एक नशे के रूप में उनके लिए जीवन को बर्बाद करने वाली समस्या हो जाती है उन्हें।
1: सही कहा सखियों, अगर ऐसी स्थिति है तो आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है तो उसका मजाक न उड़ाएं और न ही उसे अकेला छोड़ें। उसे समझें, उसके मनोबल को बढ़ाएं और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक या नशा मुक्ति केंद्र से सहायता लेने के लिए प्रेरित करें।
0: बिल्कुल, और नशे की लत इंसान को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है जो कि अब व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह नशे के लिए जुर्म भी कर सकता है। नशे के मामलों में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाओं को भी

0: महिलाओं द्वारा भी मादक पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या तलाक आदि कारण से भी महिलाएं नशे की लत लग जाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और हमें अपने घर, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, युवाओं को सही मार्गदर्शन दे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और डिंपल, मैं आपको बताऊं कि विभिन्न प्रकार के नशे किस तरीके से रहते हैं। जैसे कि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों के सेवन में शराब, सिगरेट, ड्रग्स, हीरोइन, गांजा, भांग आदि सम्मिलित होते हैं। और वहीं पर सखियों, हर चीज़ जो कि आपको किसी लत लग जाए, जैसे कि नशे की श्रेणी में ही आता है। ऐसे में कुछ आदत हैं जिन्हें छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मादक पदार्थों के अलावा चाय, कॉफ़ी, वर्तमान समय में नवीन यंत्र जैसे कि वीडियो गेम, स्मार्टफोन आदि ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने, ये भी एक नशे जैसी ही चीज़ है जो कि बच्चों की लाइफ बिगाड़ के रख देती है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अगर बात करें कि नशे की हानि क्या होती है, तो मादक पदार्थों के सेवन से सबसे बड़ी हानि है स्वास्थ्य की हानि, जिससे आपका शरीर में कई अंगों का एक तरीके से एक साथ विपरीत असर पड़ता है और ख़ास तौर पर ये आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा चपेट में ले लेता है। साथ में ही नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा चिढ़ा हुआ और मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है, और नशा करने वाला व्यक्ति सदैव अपने ख्यालों में रहता है, उसे अपने आसपास के माहौल को ज़्यादा मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ अपने में ही रहता है, उसके घर
1: बिल्कुल
0: की
1: सही
0: जिम्मेदारियां
1: कहा,
0: सब कुछ भूल जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, इसे हम सभी की भागीदारी जरूरी है। और हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे, दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे और स्वस्थ, सुरक्षित तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, यही संकल्प आज सखियों हमें इस अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर लेना है।
0: बिल्कुल। और हम ये प्रण ले सकते हैं कि हमें अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति, चाहे कुछ भी खाता हो या कुछ भी पीता हो, उसको हम उस लत से छुड़वाएं और उसको सही मार्गदर्शन पे लाएं। तो यही आज की हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मना रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो सखियो, ये तो बात हुई, और अब आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: बिल्कुल सखियो, मानसून तो अब दस्तक देने वाला ही है। और सखियो, काम काज की बातों में आज हम यही बात करेंगे कि मानसून से पूर्व कपड़ों की देखभाल किस तरीके से की जाए। कोई भी मौसम आता है, उससे पहले ही हम थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं तो उससे क्या हमारा मौसम वो अच्छे से निकल जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अभी हमारे पास समय है कि हम अपनी तैयारी पहले से ही कर लें।
0: बिल्कुल
1: मानसून आने से पहले कपड़ों की सही देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी बढ़ने से कपड़ों में फफूंदी, बदबू और दाग लगने की संभावना रहती है। और आज हम आपको कुछ आसान उपाय बताएंगे कि जिन आसान उपायों को अपनाकर आप कपड़ों को सुरक्षित रख सकती हैं।
0: बिल्कुल सखियो, कपड़ों को अच्छी तरह से धो कर रखें। लंबे समय तक रखने ही वाले कपड़ों को पहले साफ़ करके पूरी तरह से सुखा लें, और गंदे कपड़ों को दाग और दुर्गंध जल्दी विकसित हो जाता है।
1: और पूरी तरह कपड़ों को सूखने दे, कपड़ों में थोड़ी भी नमी न रहने दे, नमी रहने पर फफूंदी आ सकती है।
0: बिल्कुल अलमारी की सफाई करें।

0: मानसून से पहले अलमारी को साफ और सूखा ले, समय समय पर उसे खुला छोड़े ताकि हवा आती जाती रहे।
1: और नमी से बचाव करें। अगर अलमारी में सिलिका जेल, कपूर या नीम की सूखी पत्तियां रख सकते हैं, इससे नमी और बदबू कम होती है।
0: बिल्कुल, सूती कपड़ों को प्राथमिकता दें। बारिश के मौसम में सूती कपड़े आरामदायक होते हैं और त्वचा को सांस लेने के लिए देते हैं।
1: गीले कपड़े तुरंत न रखें, बारिश में भीगने पर कपड़ों को तुरंत धोकर सुखाएं। गीले कपड़ों को अलमारी में न या कपड़ों की टोकरी में न छोड़ें, कपड़ों को ढक कर रखें। महंगे और या ऊनी कपड़ों को कॉटन कवर और कपड़ों के बैग में रखें। प्लास्टिक कवर लंबे समय तक रखने से नमी फंस सकती है।
0: बिल्कुल सखियो, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको ध्यान रख के हम अपने कपड़ों को अच्छे से व्यवस्थित रख सकते हैं ताकि कपड़ों को कोई नुकसान नहीं हो। तो सखियो, चलते चलते अब आपका मनोरंजन और करवा देते हैं और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बिल्कुल सखियो, इस प्यारे से गीत के साथ ही अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाजत।
1: और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: महिला जगत कार्यक्रम अभी हमारी बहनें और सखियां सुन रही थी। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
1: कह

दीवार फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला नगमा।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ।

गाइड फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं अगला गाना, लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में,
0: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म से ये गीत अभी हमने सुना भूपिंदर और रूना लैला की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गाना, लव इन टोक्यो फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

परसीब बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं विकास चर्चा कार्यक्रम। आज का विषय है अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां।

अल्पसंख्यकों के लिए यह योजना उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सके, उच्च शिक्षा में उनकी उपलब्धि दर में वृद्धि हो सके और साथ ही साथ उनकी रोजगार क्षमता में सुधार हो सके।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्तियां लागू की है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 सरकार के लिए हर एक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

भारत सरकार ने UGC और CSIR की JRFF योजना की तर्ज पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप MANF योजना लागू की है। UGC और CSIR फेलोशिप योजनाएं अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों व समुदायों के उम्मीदवारों के लिए खुली है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित की जा रही फेलोशिप योजनाओं के तहत भी कवर किया जाता है। उपरोक्त योजनाओं के बीच ओवरलैप को देखते हुए यह योजना मौजूदा MANF फेलो को उनके कार्यकाल की समाप्ति तक फेलोशिप मिलती रहेगी।

0: ये तो थी जानकारी विकास चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक और योग्यता आधारित छात्रवृत्तियों के बारे में। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में दोपहर समाचार।
1: मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर

0: अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को

0: 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business. FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: 60,000 students. जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम हुणवा वाला हंगलाई किसान भाई बहना ने अपनो राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा। देखो सा भेरा भाई कार्यक्रम में आया हाँ, और ये सब किसान भाई बहन भी आई गया है कि भाई आपा कई कई जानकारी लावांगा। लारे लारे देखो जानकारी तो लाए ही सा, आपा गीत संगीत भी हुणावांगा। और आज देखो सब पहली बात करा कि भाई नशा मुक्त गाँव जो है वो समृद्ध किसान रे वास्ते बहुत जरूरी है सा।
1: बिल्कुल सही बात है सर। देखो एक नया गांव महीने देखो आप एक बार बताऊँ कि समृद्ध किसान एक ऐसी संकल्पना है जो कि भारतीय ग्रामीण समाज और कृषि व्यवस्था ने एक नई दिशा देवे। आप देखो कि अपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बात की ही कि भाई भारतीय आत्मा अना गाँव में बसे सर, और यदि गाँव में नशा री बुराई ने मिटाई दियो जावे तो अपना किसान आर्थिक और सामाजिक और मानसिक रूपों समृद्ध और शक्तिशाली हो जाएगा सर।
0: सही कह रहा हो सा। और देखो आपा जटे गांव री बात कर रहे हैं तो गाँव रे महीने वर्तमान स्थिति में देखो आज ग्रामीण भारत रो एक बहुत बड़ो हिस्सो जो है नशो जिसरे की शराब तंबाकू अफीम और दूजा जो सिंथेटिक ड्रग्स है अणारी चपेट में है। और अणारो देखो किसाना पे भी असर भी रो है। नशो न केवल किसाना रे स्वास्थ्य ने नष्ट कर रो है बल्कि देखो वणारी मेहनत री कमाई ने भी जो है वो निगल रो है सा।
1: बिल्कुल सही बात है। कुल में मूल मंत्र यो है कि जब तक गांव नशों मुक्त नहीं वेगा वह तक किसान शक्तिशाली और आर्थिक रूप मजबूत नहीं वे सके। आप देखो नशा मुक्ति ही समृद्धि जो पहलो कदम है सा।
0: और देखो नशा मुक्ति हूँ जो है किसान आर्य आर्थिक समृद्धि वे वे नशा री लत रो सीधो तौर पे किसान री जेब पे असर वे वे नशो बंद वेवा पे आर्थिक स्थिति में सुधार वेगा पया कोड़ी री बचत वेगा। एक औसत बात करा तो नशो देखो किसान आपानी कमाई रो 30-50% तक हिस्सो जो है वो नशा पे खर्च कर दे। नशो छूट जाएगा तो यो पैसो सीधो बचेगा और यो कृषि में निवेश वे सकेगा सा।
1: बिल्कुल बढ़िया बात बताइए। और देखो बच्चों तो को पैसों किसान अपनी अच्छी गुणवत्ता रहा बीज खाद आधुनिक कृषि उपकरण ड्रिप इमिग्रेशन ट्रैक्टर में लगे सके जने पैदावार बढ़ेगा सा।
0: और देखो कर्ज रे दुष्चक्र भी मुक्ति मिलेगा नशा रे कारण। देखो नशा रे वास्ते किसान भाई अक्सर जो है कर्जा में डूब जाए साहूकार ऊंचा ब्याज पे कर्जो ले लेवे। नशा मुक्ति कर्ज रे जालू भी मानने आई जाएगा सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और देखो अतिरिक्त आय रा स्रोत जहन की पैसा री बचत वेगा किसान पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन और जैसे सहायक उद्योग शुरू कर सके सा।
0: देखो सा अणी पे और बात करा कि भाई नशो मुक्त गांव वेगा तो किसान किस तरह समृद्ध वे सके अणी बारा में और बात करा बेटा। पहले आप देखो जानकारी तो आप दे रहा है लेकिन राजस्थानी गीत भी हुणाई दात कसो रहे
1: बहुत बढ़िया रहेगा सा। हुणाओ सा एक बढ़िया सो गीत।

0: दी
1: हाँ
0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
1: तो बेरा भाई देखो आप बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाए हो लारे लारे संदेश सुनाया और आटा पहली बात कर रहे हैं भाई नशा मुक्त गांव समृद्ध किसान रे वास्ते कतरो जरूरी है और देखो जटे बात करा कि भाई नशा मुक्त गांव वेगा तो स्वास्थ्य में सुधार और कार्यक्षमता में भी वृद्धि वेगा किसान भाई रो सब बड़ो धन जो है वंडो शरीर और वंडी मेहनती जैसा
7: बिल्कुल सही बात है साहब और रानी मैंने देखो आप शारीरिक क्षमता रो विकास भी वेगा नशा छोड़ने के बाद किसान की कार्य क्षमता बढ़े और खेतों में अधिक समय तक और अधिक ऊर्जा रह रहे वो काम कर सके अंडे लाला देखो कही एक नशों आदमी बीमार भी जावे तो अगर बीमार नहीं होगा तो चिकित्सा रहा जो खर्चा हुआ वणी में भी कमी होगा क्योंकि नशा के कारण घनी हारी बीमारी आवे जैसे कि लिवर सायरोसिस वेगी कैंसर वेगी टीबी वेगी और आप देखो आना पे भारी खर्च जो वेगा वो बंद वे जाएगा सा
1: सही कह रहा हूँ सा और देखो बेरा भाई परिवार रो जो मुखिया है वो स्वस्थ रहेगा तो खेती और परिवार दोनों प्रबंधन बेहतर तरीका वे सकेगा अकाल मृत्यु की घटनाएं वह भी कम वेगा सामाजिक समरसता और पारिवारिक खुशहाली भी देखो नशा मुक्त गांव वेगा तो आएगा सा
7: बिल्कुल सही बात है सा और देखो नशों केवल एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज ने बर्बाद करे घरेलू हिंसा के कारण आप देखो ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें घरेलू हिंसा रो मुख्य कारण शराब और नशों से नशा मुक्त गांव में इन्हें महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे बच्चारी बेहतर शिक्षा की भी बात करा तो नशा पे खर्च हुए वालों जो पैसों है बच्चारी अच्छी शिक्षा और स्कूल और कॉलेज री फीस में इस्तेमाल वेगा जनू नई पीढ़ी भविष्य सुधरेगा सब
1: अंडे लारिस देखो आपसी जो विवाद है वन में भी कमी आएगा गांव में देखो जमीन और गुटबाजी री अधिकांश झगड़ा नशारी हालत में वे नशा मुक्ति देखो गाँव में शांति और भाईचारो बढ़ेगा एक नशा मुक्त गाँव री समाज में प्रतिष्ठा बढ़े जनू कही वंडो विकास कार्य में बढ़ावा भी मिले और गाँव ने नशा मुक्त बनावा वास्ते देखो आप कई उपाय भी कर सका सा
7: बिल्कुल सही बात है सा देखो गांव ने नशा मुक्त करवा बात है कही देखो सामूहिक प्रयास री आवश्यकता है ग्राम पंचायत री सक्रिय भूमिका आप देखो पंचायत ने अपने स्तर पे प्रस्ताव पारित करने गांव में शराब और नशीला पदार्थ की बिक्री पे पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहे साहब
1: लारिस देखो महिला मंडल और स्वयं सहायता समूह रो गठन भी देखो ग्रामीण बेना जो है नशा रे खिलाफ सब बड़ी ताकत वे और अण में देखो समूह रे अगर लारे वे जाएगा और नशा विरोध जो अभियान है वंडो नेतृत्व ना समूह ने सौंप दांगा तो नशा मुक्त गाँव बहुत जल्दी बन सके सा
7: बिल्कुल सही बात है साहब और देखो कड़ा कानून और निगरानी यानी कि गाँव री सीमा पे अगर नज़र रखी जाए और आप देखो कि बाहर नशीला पदार्थ गांव में नहीं आ सके अवैध शराब री भट्टियाँ पे कड़ी कार्रवाई हुए अंडे लाला की नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की बात करें तो जो लोग गंभीर रूप अंडा आदि वे गया है उन्होंने चिकित्सा परामर्श देने माध्यमों वापस मुख्य धारा में इन्हें वापस लाना चाहे साहब
1: कही सका भाई समृद्ध किसान रे वास्ते कृषि में आधुनिक बदलाव भी कर सका अण में देखो नशा मुक्ति रे बाद वचित की जा ऊर्जा और धन है वंडो उपयोग खेती री जो आधुनिक बनावा में आपा कर सका जैविक खेती अपनाई सका फसल विविधीकरण अपनाई सका इस तरह जो है नशा मुक्त गांव वेगा तो किसान भाई जो पयो कोड़ी बचेगा बनाने आना सब चीजा में लगाई सकेगा सा
7: बिल्कुल सही बात है सा और देखो जागरूकता और शिक्षा री भूमिका स्कूली बच्चा रे माध्यम संदेश स्कूल में इन्हें नशा विरोधी रैलियां प्रतियोगिता आयोजित की दी जावे ताकि शुरू बच्चा अपने माता पिता ने जागरूक कर सके और खुद भी यदि वे बड़ा वे तो अन्य गलत राह पे नहीं चाले
1: सरकार भी देखो कई योजना और सहयोग कर रही है सरकार अन्य दिशा में प्रयास भी कर रही है जंडो लाभ ग्रामीण नाने उठानो चावे नशा मुक्त भारत अभियान चले ही रखो है अंडे तहत ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता शिविर भी लगाया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि और सॉयल हेल्थ कार्ड ई योजना भी जो है किसान रे वास्ते चले ही मिली है ताकि दिमागी रूप जो है किसान जागरूक वेवे और नशा मुक्त वेवे सा
7: कुल मिलन देखो कही आपत योजना कांगा का नशा मुक्त गांव समृद्ध किसान और केवल एक नारो ही नहीं है बल्कि आप देखो कि ग्रामीण भारत री तकदीर बदलवारों का अचूक मंत्र है यदि एक गांव नशों बेड़ियों टूटेगा और पूरी तरह मुक्त वेगा तो बटारी मिट्टी सोनो उपजेगा किसान रो पसीनो आप देखो

0: नशे और भट्टी में जलवा रहे बजाय खेता में बहेगा और खूब उन्नति और समृद्धि जन्म वेगा सा।
1: बहुत बढ़िया बात बताई सा फेरा भाई। और आपन तो यूज कहना भाई, आपा भी जानकारी आई यूज देवा कि भाई जो भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में नशा कर रहा है तो वी नशो छोड़ देवे। हुणवा वाला भाई बहन है वणा रे निगाह में भी कोई कर रहा है तो वणा ने भी जागरूक करे। देखो गांव नशो मुक्त वेगा जदीस जो है आपाने परिवार रो, समाज रो और राष्ट्र रो विकास वे सकेगा सा। और देखो विकास जटे वेगा तो खुशहाली आएगा आपको। तो कार्यक्रम मैंने भी खुशहाली करा।
0: बिल्कुल हुनाओ सा एक प्यारो सुरवस्तनी गीत सा।

0: तो फिर भाई देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाए और जटे जानकारी री बात कर रहे हैं। तो देखो सरकार कई भी योजना चलाए वंडी जानकारी आप किसान भाई ने देवा।
1: बिल्कुल सा। और आज आप अपने कार्यक्रम में इन्हें देखो कई एक अटल भूजल योजना री बात करें सा।
0: और देखो भारत सरकार री एक बहुत महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी पहल है जनडो खास उद्देश्य है कि देश रा जो अत्यधिक भूजल संकट जुजरिया जो क्षेत्र है वन में भूजल प्रबंधन में सुधार करना जो है अणि योजना रो उद्देश्य है सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और देखो कहिए के लगातार बढ़ती थी कि जनसंख्या देखियो शहरीकरण है पारंपरिक सिंचाई तकनीक कारण आप देखो भारत में ने राज्यों में भूजल रो स्तर खतरनाक रूप नीचे उतर रहे हो ऐसा।
0: और देखो अटल भूजल योजना जो है वन प्राथमिक उद्देश्य है कि चिन्हित जो भी राज्य है या संकटग्रस्त जी क्षेत्र है वन में भूजल संसाधन प्रबंधन में सुधार करना है, भूजल डेटा री निगरानी करना है, नेटवर्क रे विस्तार और सूचना रे प्रसार रे वास्ते राज्य और जिला स्तर पे संस्थागत व्यवस्था ने मजबूत करना है ऐसा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और देखो कहीं पानी ने साझा करने संसाधन रूप में देखनो अणि योजना रो मुख्य उद्देश्य है सा। और देखो आप तो यूएस कांगा गणी योजना रो आप पूरी तरह फायदो लो और अपन पानी रो पूरो पूरो सही उपयोग करो सा।
0: और देखो पानी रो उपयोग वेगा ऐसी तकनीक अपनाएगा किसान भाई भाई पानी री खपत कम वे जिसरे की टपक सिंचाई ड्रिप सिंचाई फवारा सिंचाई तो अणियों जो है पानी री बचत वेगा और वर्षा आएगा वनडे जल संरक्षण भी करेगा तो अपना भूजल स्तर भी बढ़ेगा
1: बढ़िया
0: सा।
1: रहेगा
0: और
1: सर।
0: देखो सा जानकारी तो और करवा लेकिन आप हो तो अब गीत संगीत आड़ी चलना सा।
1: बिल्कुल हुनाओ एक अच्छो सो गीत सा।

0: तो देखो मेरा भाई बढ़िया सो राजस्थानी गीत आप होना है। देखो जानकारी तो और भी देवा, लेकिन घड़ी आड़ी देखा तो अपने कार्यक्रम रो टेम भी वे गयो, तो चाला सा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।

0: अभी हमारे किसान भाई कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनिएगा थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से

0: जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइन आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। आज आशुराए मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप डी के अन्य मुकाबले में अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में तुर्की ने जीत के साथ समापन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 3:05 हुए हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अगली सभा में शाम 5 बजे सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण मीडियम वेव चैनल पर अब आरंभ होते हैं। सबसे पहले सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम को आप हमारे एफएम चैनल पर भी सुन सकते हैं। एक साथ

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ हैं निकिता।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम होगा जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर। शुरुआत करेंगे युवा और औद्योगिकरण सेगमेंट से, जिसमें जानेंगे स्पेयर पार्ट सेक्टर के बारे में। शौर्यगाथा में याद करेंगे कैप्टन मनोज कुमार पांडे के अदम्य साहस को। न्यू रिलीज सेगमेंट में जानेंगे नई रिलीज से जुड़ी कुछ जानकारी। साथ ही यश जौहर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंधर्व, गौहर जान, अर्जुन कपूर, मनप्रीत सिंह और पाओलो मालिनी से जुड़ी रोचक जानकारी भी हम आपको देंगे।
0: बिल्कुल। और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अंत में आज के दिन का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी खास जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम इस शानदार गीत के साथ।

0: निकिता आज के दौर में युवा को देश की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। साथ ही उनकी ऊर्जा, नए विचार और तकनीकी समझ देश के विकास को नई दिशा दे रही है।
1: बिल्कुल मोहित, और जब बात औद्योगिकरण की होती है तो युवा शक्ति उसकी सबसे मजबूत नींव बन जाती है। नए उद्योग, नई तकनीक और नई संभावनाएं युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के रास्ते खोलती है।
0: बिल्कुल, और खासकर ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट सेक्टर की बात करें तो यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण क्षेत्र में से एक है। वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ स्पेयर पार्ट्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है।
1: सही कहा, इंजन पार्ट्स, ब्रेक सिस्टम, टायर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और अन्य ऑटो पार्ट्स के निर्माण में हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। यह क्षेत्र कुशल तकनीशियनों, इंजीनियरों और प्रशिक्षित युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है।
0: बिल्कुल, और आज कई युवा केवल नौकरी ही नहीं कर रहे बल्कि स्पेयर पार्ट्स निर्माण, ऑटो सर्विसिंग और ई कॉमर्स के माध्यम से अपने स्वयं के व्यवसाय भी शुरू कर रहे हैं।
1: यही तो औद्योगिकरण की सबसे बड़ी खूबी है। यह न केवल उत्पादन बढ़ाता है बल्कि नवाचार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करता है।
0: बिल्कुल, और भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, मेक इन इंडिया और कौशल विकास कार्यक्रम भी युवाओं को उद्योगों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: और मोहित, यदि युवा नई तकनीकों को सीखते हुए उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल विकसित करें तो वे न केवल अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकते हैं।
0: तो दोस्तों, युवा शक्ति और औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। विशेष रूप से स्पेयर पार्ट सेक्टर जैसे उद्योग जो है वो देश के विकास और रोजगार सृजन में अपनी अहम योगदान जो है वो निभा रहे हैं।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ ये था यूथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेगमेंट में स्पेयर पार्ट सेक्टर। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाते रहिए।

0: दोस्तों, अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट शौर्य गाथा का, जिसमें आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के अमर नायक परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे की, जिनकी कल यानी 25 जून को जयंती थी।
1: बिल्कुल मोहित, कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म आज 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रोड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति और अनुशासन के गुण दिखाई देते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल तथा रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की।
0: बिल्कुल, और खेलों में भी उनकी विशेष रुचि थी। बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग उनके पसंदीदा खेल थे। वर्ष 1990 में उन्हें NCC के जूनियर डिवीज़न का बेस्ट कैंडिडेट भी चुना गया था।
1: मोहित, उनकी एक बात आज भी युवाओं को काफ़ी प्रेरित करती है। SSB इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वे सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया कि मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ।
0: और यही सपना उन्हें अपने साहस और बलिदान से सच कर दिखाया। और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हें 7 जून 1997 को 11 गोरखा राइफल्स की 1ली बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला।
1: साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनकी यूनिट को बटालिक सेक्टर में तैनात किया गया। उन्होंने जुबर टोप सहित कई महत्वपूर्ण चोटियों को दुश्मन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लेकिन उनका सबसे वीरतापूर्व अभियान था खालूवारा हिल्स पर कब्जा करने का। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात उन्होंने दुश्मन की कई चोटियों पर सोलो लीडरशिप करते हुए हमला कर दिया।
1: बिल्कुल, और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे और अपने साथियों का उत्साह भी बढ़ाते रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि उनकी डायरी में एक पंक्ति लिखी थी, यदि मृत्यु मेरे साहस को साबित करने से पहले आ जाए तो मैं मृत्यु को भी मार डालूंगा।
0: और अपने अंतिम अभियान में उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और खालूबार पर विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इसी दौरान उनके माथे पर गोली लगी और वे मातृभूमि की रक्षा करते हुए 3 जुलाई 1999 को वीरगति को प्राप्त हो गए।
1: उनके अद्वितीय साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया।
0: और आज देश भर में उनके विद्यालय, भवन, स्मारक, स्टेडियम और सड़कें जो हैं वो उनके नाम पर हैं। उनकी वीरता की गाथा हर भारतीय को देश सेवा और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती है।
1: दोस्तों, कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, साहस और देश प्रेम का बल हो तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। इसी के साथ शौर्य और बलिदान के प्रतीक कैप्टन मनोज कुमार पांडे को सच सच नमन।

0: दोस्तों, अब समय है न्यू रिलीज सेगमेंट का, जहां हम आपको बताएंगे सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म पर इस सप्ताह रिलीज हुई नई फिल्मों और वेब सीरीजों के बारे में।
1: बिल्कुल मोहित, अगर आप इस सप्ताह कुछ नया देखने की सोच रहे हैं तो थिएटर और OTT दोनों जगह मनोरंजन के कई शानदार विकल्प मौजूद हैं।
0: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं सिनेमाघरों की। इस सप्ताह बड़े पर्दे पर वेलकम टू द जंगल, सुपर गर्ल, नव्या चक्र, तेरा मेरा नाता और पेडी जैसी फिल्में रिलीज हुई है, जो अलग अलग विषयों और शैलियों के साथ दर्शकों का मनोरंजन कर रही है।
1: यानी एक्शन, ड्रामा, रोमांस और मनोरंजन का पूरा पैकेज दर्शकों को सिनेमाघरों में देखने को मिल रहा है।
0: बिल्कुल, और अब बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की। इस सप्ताह OTT पर भी कई नई और चर्चित प्रस्तुतियां रिलीज हुई है।
1: जी हाँ, इनमें राजा शिवाजी, ग्राम चिकित्सालय सीजन 2, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3, अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 और द बेयर सीजन 5 जैसी बहुचर्चित सीरीज भी शामिल हैं।
0: इसके अलावा लिटिल ब्रदर, परफेक्ट फैमिली, लिंगम और नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो जैसी नई प्रस्तुतियां भी दर्शकों के लिए उपलब्ध है।
1: तो दोस्तों, चाहे आप बड़े पर्दे का रोमांच पसंद करते हो या घर बैठे OTT पर नई फिल्में और वेब सीरीज देखना चाहते हो, इस सप्ताह आपके पास मनोरंजन की कोई कमी नहीं है।
0: तो दोस्तों, इसके साथ ये थी आज की न्यू रिलीज सेगमेंट।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब याद करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे निर्माता को जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यश जौहर की, और आज उनकी पुण्यतिथि है।
4: बिल्कुल मोहित, यश जौहर सिर्फ एक सफल निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे भारतीय फिल्म उद्योग में गुणवत्ता, पारिवारिक मूल्यों और भव्य प्रस्तुतियों के लिए भी जाने जाते थे। उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है।
3: यश जौहर का जन्म 6 सितंबर 1929 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1950 के दशक में एक पब्लिसिस्ट और स्टिल फोटोग्राफर के रूप में की। बाद में वे फिल्म निर्माण से जुड़े और अपनी मेहनत तथा संगठन क्षमता के बल पर उद्योगों में एक अपनी अलग पहचान बनाई।
4: वर्ष 1976 में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित बैनरों में से एक बना।
3: निर्माता बनने से पहले यश जौहर ने कई प्रसिद्ध फिल्मों में प्रोडक्शन कंट्रोल और एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया। इनमें गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी चर्चित फिल्में शामिल है।
4: धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी उनकी पहली फिल्म 1980 की दोस्ताना बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल रही। इसके बाद दुनिया, मुकद्दर का फैसला, अग्निपथ, घुमराह और डुप्लीकेट जैसी फिल्मों ने उनके बैनर को मजबूत पहचान दिलाई।
3: और उन्होंने अपने पुत्र करण जौहर को भी फिल्म निर्माण की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1998 में करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म कुछ कुछ होता है भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक बनी।
4: दोस्तों

0: इसके बाद कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी फिल्मों ने धर्मा प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन फिल्मों ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय सिनेमा की पहचान मजबूत की है।
1: यश जौहर ने हॉलीवुड फिल्म द जंगल बुक में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अनुभव को दर्शाती है।
0: यश जौहर की फिल्मों ने कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त किए हैं, विशेष रूप से कुछ कुछ होता है को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का सम्मान मिला। वहीं कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो ने भी कई फिल्मफेयर, आईफा, जी सिने और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए।
1: बिल्कुल, और उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने वर्ष 1971 में हीरू जौहर से विवाह किया। उनके पुत्र करण जौहर आज भारतीय सिनेमा के सबसे सफल फिल्मकारों और निर्माताओं में गिने जाते हैं।
0: 26 जून 2004 को मुंबई में 74 वर्ष की आयु में यश जौहर का निधन हो गया। उस समय वे कैंसर से भी जूझ रहे थे,
1: लेकिन उनका योगदान और उनकी बनाई हुई सिनेमाई विरासत आज भी करोड़ों दर्शकों के दिलों में जीवित है।
0: तो इसी के साथ भारतीय सिनेमा को नई पहचान देने वाले धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक और दूरदर्शी निर्माता यश जौहर को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।

0: दोस्तों, अब बात करेंगे दो ऐसी महान हस्तियों की जिन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक है भारत के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और दूसरे हैं प्रसिद्ध मराठी गायक अभिनेता बाल गंधर्व।
1: बिल्कुल मोहित, एक ओर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी लेखनी से भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी तो दूसरी ओर बाल गंधर्व ने अपने अद्भुत गायन और अभिनय से मराठी रंगमंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज है दोनों का जन्मदिन।
0: बिल्कुल, शुरुआत करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से। उनका जन्म 26 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के नेहाटी में हुआ था। वे प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, निबंधकार और पत्रकार थे तथा बंगाली साहित्य में साहित्य सम्राट के नाम से भी जाने जाते थे।
1: आधुनिक भारतीय साहित्य के प्रमुख स्तंभों में गिने जाने वाले बंकिम चंद्र ने 14 उपन्यासों सहित अनेक निबंध और लेख लिखे। उनकी रचनाओं ने भारतीय साहित्य को नई दिशा दी।
0: उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति आनंद मठ वर्ष 1882 में प्रकाशित हुई। इसी उपन्यास से निकला वंदे मातरम गीत आगे चलकर भारत का राष्ट्रगीत बना और स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में राष्ट्रभक्ति का संचार किया।
1: और दोस्तों, उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, विश्वरक्ष देवी, चौधरानी और सीताराम शामिल है। वे डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी रहे तथा उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर सम्मान से नवाजा गया।
0: बिल्कुल, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना मार्गदर्शक माना जबकि श्री अरबिंदो ने उन्हें राष्ट्र निर्माता और दूरदर्शी विचारक कहा।
1: दोस्तों, अब आगे बात करते हैं मराठी रंगमंच के महान कलाकार बाल गंधर्व की। उनका वास्तविक नाम नारायण श्रीपाद राजहंस था और उनका जन्म 26 जून 1888 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था।
0: उनकी गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें बाल गंधर्व की उपाधि दी। उस दौर में महिलाओं को रंगमंच पर अभिनय की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने मराठी नाटकों में अनेक महिला पात्र निभाए। उनके अभिनय और गायन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
1: उन्होंने 1905 में किर्लोस्कर नाटक मंडली से अपने रंगमंचीय सफर की शुरुआत की और बाद में गंधर्व संगीत मंडली की स्थापना की। उन्होंने लगभग 27 प्रसिद्ध मराठी नाटकों में अभिनय किया और नाट्य संगीत को लोकप्रिय बनाया।
0: और वर्ष 1955 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और 1964 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर भी उनके सम्मान में ही स्थापित किया गया।
1: तो इसी के साथ इन दोनों महान

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करेंगे भारतीय संगीत और सिनेमा जगत की दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। एक है भारत की पहली रिकॉर्डिंग स्टार और प्रसिद्ध गायिका गौहर जान, और दूसरे हैं हॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर। दोनों का ही आज जन्मदिन है।
4: बिल्कुल मोहित, सबसे पहले बात करते हैं गौहर जान की। उनका जन्म 26 जून 1873 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनका मूल नाम एंजेलिना योवार्ड था, लेकिन बाद में वे गौहर जान के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हें भारत की पहली सेलिब्रिटी गायिका और ग्रामोफोन गर्ल कहा जाता है।
3: दोस्तों, उन्होंने भारतीय संगीत इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। वर्ष 1902 में उन्होंने भारत के शुरुआती ग्रामोफोन रिकॉर्ड सहित जो है उसमें हिस्सा लिया, और 1902 से 1920 के बीच 600 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। साथ ही उन्होंने हिंदी, बंगाली, उर्दू, गुजराती, तमिल, मराठी, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में भी गायन किया।
4: उन्होंने ठुमरी, दादरा, कजरी, चेती, भजन और शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। उनकी प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में रस के भरे तोरे नैन और राधे कृष्ण बोल मुख से जैसे गीत शामिल हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह में भी उन्हें प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था।
3: और उनके योगदान के लिए जो है वो आज भी याद किए जाते हैं। 26 जून 2018 को गूगल ने उनकी 145वीं जयंती पर विशेष डूडल बनाकर उन्हें सम्मान दिया। 17 जनवरी 1930 को मैसूर में उनका निधन हो गया, लेकिन भारतीय संगीत में उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा।
4: दोस्तों, अब बात करते हैं अभिनेता अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर का जन्म आज के दिन 1985 को मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर और मोना शौरी कपूर के पुत्र हैं,
3: और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सहायक निदेशक और निर्माता के रूप में की। वर्ष 2012 में फिल्म इशक जादे से उनका जो नया अभिनय है उससे दुनिया में कदम रखा उन्होंने, और इस फिल्म के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू मिला और फिल्म फेयर में नामांकन की प्राप्ति भी हुई।
4: इसके बाद उन्होंने गुंडे, टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, मुबारका और हाल ही में सिंगम अगेन जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 2014 में आई फिल्म टू स्टेट्स उनके करियर की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक रही है।
3: अवार्ड्स की बात करें तो अर्जुन कपूर को जी सिने अवार्ड, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, स्टार डस्ट अवार्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। अभिनय के अलावा वे फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7वें सीजन के होस्ट भी रह चुके हैं।
4: तो दोस्तों, आज जन्मदिन के अवसर पर हम भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार गौहर जान और लोकप्रिय अभिनेता अर्जुन कपूर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

0: दोस्तों बात करेंगे दो ऐसी खेल हस्तियों की जिन्होंने अपने अपने खेलों में दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई।
1: बिल्कुल मोहित, आज जन्मदिन है भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और इटली के महान फुटबॉलर पाओलो मालदिनी का।
0: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं मनप्रीत सिंह की। उनका जन्म 26 जून 1992 को पंजाब के जलंधर में हुआ था। मिडफील्डर के रूप में खेले जाने वाले मनप्रीत ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया।
1: मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता, जो ओलंपिक में भारतीय हॉकी का 41 वर्षों बाद पहला पदक था। इसके अलावा उन्होंने एशियाई खेलों, एशिया कप और एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को कई स्वर्ण पदक दिलाए हैं।
0: वर्ष 2019 में उन्हें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया और हाल ही में वे भारत के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी भी बने। उनका सपना हमेशा से देश के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना रहा है।
1: दोस्तों अब बात करते हैं फुटबॉल जगत के महान डिफेंडर पाओलो मालदिनी की। उनका जन्म 26 जून 1968 को इटली के मिलान शहर में हुआ था। उन्हें फुटबॉल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक खिलाड़ियों में से एक माना जाता है।
0: उन्होंने अपना पूरा 25 साल का करियर केवल एसी मिलान क्लब के लिए खेलते हुए बिताया। उन्होंने क्लब के लिए 900 से अधिक मैच खेले और 26 बड़ी ट्रॉफियां जीती, जिनमें से 5 UEFA चैंपियंस लीग और 7 सीरी ए खिताब शामिल है।
1: इटली की राष्ट्रीय टीम के लिए भी उन्होंने 126 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले और कई वर्षों तक कप्तानी की। उनकी शानदार नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और खेल भावना के कारण उन्हें द कप्तान के नाम से भी जाना जाता था।

0: दोस्तों अब समय है कार्यक्रम के खास हिस्से आज के इतिहास का, यानी 26 जून के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटनाएं हुई, आइए जानते हैं।
1: सबसे पहले बात करते हैं साल 1539 की। तो आज ही के दिन चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
0: बात करें साल 1945 की, तो आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनाइटेड नेशन ने चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे।
1: साल 1948 को आज ही के दिन सोवियत संघ द्वारा लगाए गए बर्लिन नाकाबंदी के जवाब में पश्चिमी देशों ने प्रसिद्ध बर्लिन एयरलिफ्ट अभियान शुरू किया था।
0: बात करें साल 1975 की, तो आज ही के दिन देश में आपातकाल लागू होने की घोषणा की। तो दोस्तों ये थी 26 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं।
1: तो दोस्तों खेल जगत में सबसे पहले आते हैं क्रिकेट की ओर, जो कि आज का पहला मैच है भारत बनाम आयरलैंड। उनका पहला T20 मैच होने वाला है आज। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम आज आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेलेगी शाम 6 बजे। साथ ही साथ भारतीय महिला टीम ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है।
0: तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस सॉन्ग के साथ आपसे लेंगे इजाजत। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ थी
1: निकिता।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र

0: स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। श्रोताओं, फिल्म संगीत को लेकर हाजिर है आपके रेडियो दोस्त चंचल।

श्रोताओं, मौसम की खुशगवारी और इसकी बेदर्दी को गीतों में अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है। गीतों में आप देखेंगे कि मौसम दोस्त भी है, दुश्मन भी। और फिल्मी गीतों में मौसम की रुमान परवर फ़ज़ा से पैदा होने वाले इश्किया जज्बात को भी बखूबी दिखाया गया है।

0: फिल्म संगीत लेकर फिर से हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। अब की रुत में जब धरती को बरखा की महकार मिले, मेरे बदन की मिट्टी को भी रंगों में नहला देना। रंगीला फिल्म का ये गीत आशा भोंसले और आदित्य नारायण की आवाजें हैं।

0: कौन है इस रिमझिम के पीछे छुपा हुआ, ये आंसू सारे के सारे किसके हैं। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे जयपुर केंद्र से और सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी, उसके बाद सुनिएगा 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैम पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। समारोह में रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े

0: चीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। डीग में जिला कलेक्टर राजकुमार कसवां की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। नागौर में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। जैसलमेर में माए भारत के स्वयं सेवकों ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आम जन को जागरूक किया। पाली के बाली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान समाज को नशे के नुकसान से जागरूक किया गया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिए निकाले जा रहे हैं। इन्हें करबला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक सभाएं आयोजित की गई। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आमजन से इस मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज जयपुर के निमेड़ा स्थित एक गौशाला में आयोजित धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यों का आधार है। राज्यपाल ने गायों को चारा खिलाकर लोगों को जीवों के प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने का आग्रह किया।

देश को सर्वाधिक सैन्यकर्मी देने वाला झुंझुनू जिले के वायु सैन्यकर्मी सुरेंद्र मोगा के सर्वोच्च बलिदान को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट में शामिल किया गया है। सार्जेंट मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। उनके साथ 5 अन्य जवानों को भी वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर भी सुरेंद्र मोगा का नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की सही सूची देश को देने की बात कही थी। भीलवाड़ा में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर युवा संबल मेला भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू जिले के कुतुबपुरा गांव में नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान की ओर से आज नॉन वाटर शेड परियोजना का शुभारंभ हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ने ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण अपनाने और खेतों में अजोला और कम पानी की फसलें उगाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की भी बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इस दौरान दक्षिणी जिलों में भी कई जगह पर तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट हुई। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे और कई जगह पर बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ा है। इसके अगले हफ्ते तक मध्य और उत्तरी भारत तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर या IRCTC पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मोहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर की निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस के दौरान अफवाह, नशा, गुंडागर्दी या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने

0: की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने चित्तौड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम हैं। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैंक की प्रगति और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के जन कल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय जिला प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री के तहत राज्य सरकार एवं एलिम्को के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। शिविर में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में उदयपुर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पश्चिम भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं विमानन केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, रनवे विस्तार, कार्गो हब एवं एरोसिटी विकास की संभावना पर विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी सुझाव दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, नगर परिषद और यूआईटी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुर्ग पर हुए अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग में विकसित की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, विद्युत साज सज्जा और यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए वेस्ट संग्रहण अभियान का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की अपील की। इसी कड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चित्तौड़ दुर्ग पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुरेश शर्मा और डॉक्टर मुकेश माली ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान योग स्थल पर LED स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सू पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पैगंबर मोहम्मद रा नवासा हजरत इमाम हुसैन री शहादत रू प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। इन मौके माथे शहीदारी याद माए जुलूस रे साथे ताजिया निकालिया जा रिया है। इन्हें करबला मैदान माए परंपरागत रीत सू सुपुर्दे खाक करियो जा रियो है। इनसू पहलिया प्रदेश भर माए मुस्लिम बाहुल्य इलाका माए मजलिसा और धार्मिक सभावां राखी जी। जयपुर रा रामगंज दिल्ली रोड और चार दीवारी खेतर माए जगह जगह लंगर और पानी री छबीला लगाई जी। अजमेर माए मुहर्रम रे मौके माथे खासो उछास देखियो जा रियो है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे फातिहा पड़ी और ब्यूरो माणा खबर नवीसु।
1: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमद हारिज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभा बागड़े आम जनसू इन मानसून रे चालता 32 पेड़ लगाने रो हेलो करियो है। राज्यपाल आज जयपुर रा निमेड़ा थापित एक गौशाला माए राखी जा धार्मिक आयोजन माए भाग लियो। इन मौके माथे वणा कहो कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यारो आधार है। राज्यपाल गाया ने चारों खिलार लोगा ने जीवा रे प्रति करुणा और दया भाव बनाए राखने री अरज भी करी। देश ने सबसू 32 सैन्य कर्मी देवन वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए बेड़ो करियो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथे दूजा 5 जवाना ने भी वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करियो गयो है। इनरे साथ ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगा रो नाम लिखियो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र री कानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लखस युवावां ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करयो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानिसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करयो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवावां रे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनावां री शुरुआत री बात भी करी। IRCTC नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू करियो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुओं और सैलानियों ने उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सू शुरू वेली। रेलगाड़ी माए यात्रियों ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत AC वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इनरे खातिर IRCTC रे टूरिज्म पोर्टल माथे या IRCTC पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। अरब मौसम प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगावा माथे बारिश की गतिविधियां दर्ज करी जी। इनरे चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगावा माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू 32.5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी भी। महकमा रे मुजब आवता 2-3 दिना माए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसूनरी बिरखारी गतिविधियां बणियोड़ी रह सके है। इन बीचे मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इन रे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बणियोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। साथ ही AIR न्यूज DD न्यूज

प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इनरो सीधो प्रसारण भी वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पाछे क्षेत्रीय भाषा मा माए भी कार्यक्रम रो प्रसारण करयो जावेला। और आखिर माए खास खास खबरां आप एक कर फेरू सुनो। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला।

0: राम राम भेरा भाई, राम राम।
1: राम राम नीता भाई सा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम हनुमा वाला हंगले किसान भाई बहना ने अपानो
1: राम राम सा।
0: देखो सा भेरा भाई कार्यक्रम में आया हाँ, चौपाल में बैठा हाँ, और देखो किसान भाई रे बहना रे वास्ते नराहारी जानकारी लेने आया हाँ। जड़ी में देखो चौपाल री बात है, मौसम री जानकारी करावांगा, सरकार कई योजना चलाई रही है वंडी जानकारी भी दांगा, तो देखो सामान्य जानकारी भी दांगा, लारे लारे कई दिवस उत्सव है तो वंडी जानकारी भी करावा, और देखो मनोरंजन करनो भी नहीं भूला सा।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: आज सब पहली कई जानकारी लाया हो सा।
1: देखो सर, आप आज अपन कार्यक्रम में जो सब बढ़िया जानकारी लाया और पहली जानकारी लाया वह यह है कि ड्रोन तकनीक रो खेती बाड़ी में प्रयोग किस तरह करा। देखो खेती में ड्रोन रो उपयोग न केवल भ्रम और समय री बचत करे, बल्कि आप देखो कम संसाधन में ने अधिक गुणवत्ता और आप देखो कि पूर्ण पैदावार और सुनिश्चित भी करे, और सिर्फ देखो कि कनी टाइम श्रम ज़्यादा लागतो, अब यानी ड्रोन रे आवाओ कही है कि श्रम महीने भी काफ़ी बचत होगी।
0: सही कह रहा सा, और देखो खेती में ड्रोन रो उपयोग कई जो एक खास काम है मने वास्ते करियो जावे सा,
1: और ड्रोन सही बात है सा।
0: ड्रोन देखो नैनो यूरिया और कीटनाशकारो छिड़काव सटीक रूपो करियो जावे सा।
1: जी जी जी जी, और अनि मैंने देखो ड्रोन में लग गया था सेंसर और नोजल छिड़काव रो अत्यधिक सटीक बनावे, और यो पौधारी आवश्यकता अनुसार भी देखो सीधा बना पे दवा छिड़के, जणियों आप देखो रसायनरी बर्बादी तकनीक वेवे। और देखो आपने एक बात बतावा कि ड्रोन तकनीकों समय री भारी बचत भी वेवे, पारंपरिक रूपों पीठ पे पंप टांग ने एक एकड़ में छिड़काव करवा में कई घंटा लागे, जबकि ड्रोन यो काम मात्र 7 से 10 मिनट में पूरा कर लेवे। ड्रोन रे प्रयोग देखो नीता भाई साहब कही है कि किसान ने जहरीला कीटनाशक में सीधा संपर्क में नहीं आनो पड़े और उन्हें स्वास्थ्य पे बुरा असर भी नहीं पड़े।
0: और देखो भेरा भाई ड्रोन में मल्टी स्पेक्ट्रल और थर्मल सेंसर लगे तका वेवे, ई सेंसर इंसानी आँखों नहीं दिखवा वाला जी पौधा है वनारे तनाव ने भी पकड़ लेवे है, फसल में कोई बीमारी या कीट लगवा पे ड्रोन तुरंत वंडी पहचान कर लेवे, अणि बीमारी पूरी फसल में फैलवा रे पहले ही देखो वंडो इलाज संभव हो जावे, अणि तरीका हूँ देखो ड्रोन रोग और कीड़ा रो शीघ्र पत्तो लगाई ने मदद भी करे और वन्य निवारण में भी मदद करे।
1: बिल्कुल सही बात है साहब, और देखो ड्रोन इमेनिंग यो पतो लगानो आराम आसान भी जावे कि भाई फसल में कणी समय ने क्लोरोफिल कम है यानी कि कटे पोषण की कमी है। और देखो अपन कार्यक्रम में और भी जानकारी की बात करेंगे, लेकिन आपको तो मनोरंजन में बात है एक राजस्थानी लोकगीत सुनावा सर। जी सर।

0: तो भेरा भाई देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाए और अटा पहली बात कर रहा है कि ड्रोन तकनीक रो खेती बाड़ी में कई प्रयोग है
1: जी
0: ऐसा।
1: सर। देखो ड्रोन कई एक मिट्टी और खेत रो विश्लेषण सटीक 3D मानचित्र द्वारा करे और बोए रे पहला आप देखो ड्रोन खेत ने चक्कर लगे ने मिट्टी री बनावट ढलान और जल निकासी रो सटीक नक्शो तैयार कर दे। अब आप देखो बड़ा बड़ा खेत हुए कतरा ही वीघा तक फैलिया तक हुए ड्रोन कई है कि बहुत कम समय में ने पूरा खेत ने कतरा भी वीघा में ने फैलियो तक हुए पूरा कवर कर लेवे। और आप देखो वंडो चित्र आप रहे टीवी पे या कंप्यूटर पे आपने बताई देवे कटे कई वेरो कई नहीं वेरो तो ड्रोन रो तो देखो घणो हारो उपयोग है और देखो वो सटीक नक्शो भी तैयार करे जिन्हों आपने खेतीबाड़ी में घणो हारो लाभ भी मिले सा।
0: और देखो यह मिट्टी में नमी रे स्तर और पोषक तत्वारी जो उपलब्धता है वंडो विश्लेषण करवा में भी मदद करे। जने हूँ कही है किसान सही मात्रा में खाद रो चयन भी कर सके। थर्मल सेंसर री मदद हूँ देखो ड्रोन खेत या पचे वंडा हिस्सा ने चिन्हित करे। जिस तरह की आपके ओक बड़ा बड़ा खेत है वन में तो जटे सूखो रेवे जटे पानी रो ठहराव वत्तो है ऐसा डेटा तैयार करे और वंडे आधार पे किसान भाई केवल जरूरत वाली जगह पे जो है पाणत कर सके। जने पानी रो सही तरीका उपयोग भी वही सके सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और देखो कहिए कि आणि मैंने आप देखो ड्रोन द्वारा फसल री पैदावार रो अनुमान भी बहुत अच्छा ढंग लागी सके। और देखो ड्रोन कई एकत्रित डेटा और तस्वीरों ने विश्लेषण यो पतो लगी सके कि भाई कटाई रे केड़े कणी पैदावार व्यवहारी कतरी संभावना है यो बाजार री योजना बनाव में भी बहुत हद तक मदद करे सा।
0: खेती में ड्रोन रो प्रयोग करवाऊँ देखो किसान भाई और पर्यावरण दोया रहो सीधो लाभ ऐसा। संसाधनारी बचत वे लागत में कमी आए वत्तो मुनाफो मिले। रसायना रो सटीक उपयोग वेवारे कारण मिट्टी और भूजल में जहर गुलवारो खतरो है वो भी कम वे जाए सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और देखो समय श्रम और इनपुट यानी कि खाद और दवारी बचत व्यवहार के कारण खेती में लागत भी घटे और कठिन क्षेत्र की बात करें तो सुगमता में पहुंच भी सके। ऊंचा वगाना जैसे कि आम नारियल सेब गनी फसलां जैन गन्ना में जटे इंसानों रो जानो बहुत मुश्किल वे वटे ड्रोन आसानियों काम करे।
0: किसान भाई देखो मौसम रे मिजाज या अचानक आया कीट हमला है बना ने तुरंत फैसलो ले सके और जदि तुरंत फैसलो लेगा तो फसल ने हानि नहीं पहुंचेगा सा। और देखो जटे हानि नहीं पहुंचेगा लाभ री बात करने तो आपको तो कार्यक्रम में भी लाभ करावा बढ़िया सो राजस्थानी गीत होना वा।
1: बिल्कुल होना हो सर।

0: तो भेरा भाई देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाए और जटे देखो किसान भाई ने मौसम री जानकारी भेजावे तो भी देखो खेती बाड़ी रो काम हाउ तरीका कर सके। तो मौसम री जानकारी बतावा भाई आवा वाला दना में जो है मौसम जो है उमस और तापमान रे लारे कुछ इलाका में प्री मानसून री हल्की बारिश या पचे गरज चमक री संभावना वणी तकी है सा। हल्की बोछारा पड़वा री भी संभावना है। तापमान री बात करा तो देखो अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस रेवारी संभावना है। हवारी गति की बात करा तो 12-16 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगू पश्चिम दिशा में चलेगा और आर्द्रता जो है 35-45% रेवारी संभावना है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो अगर अपन सामान्य जानकारी की बात करा तो देखो कि एक खेत री तैयारी मानसून री पहली अच्छी बारिश वही रही है तो खेतरी गहरी जुते रो काम पूरो कर लेनो और यदि मिट्टी शारी है तो आने समय जिप्सम और अच्छी सड़ी हुई गोबर री खाद मिलने खेत अच्छी तरह आप उदार भी सको सा।
0: और देखो खरीफ फसल जिस तरह की मक्का ग्वार मूंगफली रे वास्ते उन्नत और प्रमाणित बीजा उर्वरक और आवश्यक जो कृषि यंत्र है वंडी व्यवस्था देखो पहला कर लेनी है सा।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखो कई एक जल संचयन यानी कि खेत पर बने थका फार्म पॉइंट चयन वेग्या खेत तलाई और सफाई सुनिश्चित करनी वर्षा जल संचयन रे मॉडल ने दुरुस्त कर ले लो ताकि कही कि आओ वाला पानी रो अधिकतम आप संचय कर सको सा।
0: कीट प्रबंधन री बात करा तो आगामी बुआई रे वास्ते एकीकृत कीट प्रबंधन रे तहत फेरेमन ट्रैप लगाई देनो है। अंडा इंतजाम भी आपने करना है। बीजोपचार रे वास्ते कवकनाशी और राइजोबियम पीएसपी कल्चर आपने पहली लाइन रख लेनो है।
1: बिल्कुल सही है सा। और देखो कही एक सुरक्षा उपाय की बात करें तो वज्रपात यानी कि आकाशीय बिजली या तेज हवा रे दरमियान आप देखो खेत में पेड़ या बिजली रे खंबा रे नीचे खड़ो नहीं रहनो है और खुला में रखा तक जितना भी खेती बाड़ी रो उत्पाद है वहां ने सुरक्षित स्थान पर ढांकने रखना है सा।
0: और देखो अंडे लारे आपा तो कांक भाई सब तरह रो ध्यान रखनो है। और जायद मूंगफली री बात करा तो खरपतवार रे प्रकोप रे नियंत्रण करवा रो उचित पेंगिंग रे वास्ते इंटरकल्चर ऑपरेशन और हाथ घुड़ाई री भी जरूरत वेगा सा।
1: बिल्कुल सा। और भिंडी री बात करा तो तेज हवा चालवारी संभावना ने देखता था किसान भाई बहनों ने भिंडी व दूसरी सब्जियां ने तुड़ाई करवारी सलाह दी दी गई है ताकि आप देखो कि संभावित नुकसानों बच सका सा।
0: बेल वाली साग भाजी की बात करा तो कुष्मान कुलरी साग भाजी में लाल रंग कीड़ अंकुरित और नई पत्तियां ने खाई ने फसल ने नुकसान पहुंचावे। अंडी रोकथाम रे वास्ते कार्बेरिल 5% चूरन 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दरों सुबह या सांझरी टाइम पे भुरकाव कर देनो ऐसा।
1: बिल्कुल सा। और ग्रीष्मकालीन हरा चारा की बात करा तो देखो सबने पता है गर्मिया रे महीना में हरा चारा की कमी वेणो काफी आम बात है लेकिन आप देखो हरा चारा वाली जो किस्म है ज्वार बाजरा मक्का लोबिया आदि री बुआई टेम रीता तक आप कर सको सा।
0: तो अणी तरीका हम देखो खेती बाड़ी रो काम जो है किसान भाई करेगा मौसम ने ध्यान में रखता तका तो वही जो मेहनत कर रहा है देखो बेकार नहीं जाएगा और फसल उत्पादन भी आवा वाला टाइम में मनाने हाउ मिल सकेगा। और देखो अबे आपको तो पाछा गीत संगीताड़ी चलना और सुनावा बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: तो देखो सा अच्छो सो भजन हुणायो आपा रामा पीर रो। और देखो आपा अपने कार्यक्रम में ने रोज नत नवी केंद्र सरकार या राज्य सरकार योजना की जानकारी दा। आज आपा अपने कार्यक्रम में ने जो योजना लाया वाया है कि भाई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यानी कि आप देखो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की दी थी कि एक बहुत अच्छी और प्रमुख योजना है। अंडो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने बढ़ावा देनो और उन्हें औपचारिक रूप देनो और आत्म भारत अभियान के तहत स्थानीय व्यवसाय ने मजबूत करनो सा।
1: आणि योजना रहता देखो असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां रो वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करनो है। और एक जिलो एक उत्पाद दृष्टिकोण रहता जिला रा जो विशिष्ट खाद्य उत्पाद है जिसरे कि भाई आपने उदयपुर में देखा तो मक्को आमला या दूजा जो स्थानीय उत्पाद है वनारी ब्रांडिंग और मार्केटिंग ने बढ़ावा देनो भी अणि योजना रो खास उद्देश्य है सा।
0: बिल्कुल सा। और अन्य मुख्य उद्देश्य रही अगर आप बात बतावा तो देखो नई इकाइयाँ स्थापित करने और मौजूदा इकाइयाँ रे विस्तार रे बात है, बैंक ऋण पे सब्सिडी देनो, यानी कि किसान उत्पादक संगठन जितना भी है वहाँ स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ने सहायता देनो भी अन योजना रो मुख्य उद्देश्य है साहब।
1: लाभ और वित्तीय सहायता री बात करा फेरा भाई तो व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाइयां पात्रता योजना री लागत रो जो है 35% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी यानी अधिकतम 10 लाख रुपया पे प्रति इकाई यो है वित्तीय सहायता मिले। स्वयं सहायता समूह कार्यशील पूंजी और छोटा उपकरण आरे वास्ते प्रति सदस्य 40,000 रुपया री पूंजी मिले। किसान उत्पादक संगठन और सहकारी जो समितियां हैं उन्होंने सामान्य बुनियादी ढांचा मूल्य संवर्धन और मूल्य श्रृंखला रे वास्ते 35% जो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिले सा।
0: बिल्कुल सही बात है साहब। और देखो अणि योजना में ने आप अगर भाग ले वो तो वंडे बात है कई पात्रता चाहे वंडी अगर आप बात करा तो आवेदक री जो आयु है वह 18 वर्ष अधिक वेणी चाहे। शिक्षा री योग्यता री बात करें तो कम कम 8वीं पास वेणो बहुत जरूरी है। एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति वित्तीय सहायता रे बातें आवेदन कर सकेगा और वो इस पात्र होगा। योजना के तहत रही अगर आप बात बताओ तो नया और मौजूदा दो ही प्रकार के उद्यम सहायता प्राप्त कर सके बशर्ते कि वे खाद प्रसंस्करण जुड़े थका वैसा।
1: दस्तावेज की बात करना तो देखो आधार कार्ड और पैन कार्ड वेणो चावे, बैंक खाता विवरण पासबुक या पचे कैंसिल चेक वेणो चावे, आवेदक रो पासपोर्ट साइज रो फोटो, व्यवसाय रो विवरण, परियोजना री रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता रो प्रमाण, 8वीं या वणियु वत्ती री मार्कशीट वेणी चावे, भूमि दुकान रो स्वामित्व और किराया रा दस्तावेज भी वेणा चावे सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो आवेदन री बात करें तो ऑनलाइन पंजीकरण री है और मैंने योजना ने आधिकारिक वेबसाइट

0: होटल आप देखो कि जो प्राइम मिनिस्टर री है वहीं पे आप जाइने न रजिस्टर कर सको और लॉगिन करवाने बाद आवेदन फॉर्म भरनो और आवश्यक दस्तावेज जो भी है अपलोड कर लोगा सा।
1: जमीनी स्तर पे अपनी सहायता रे वास्ते हर जिला में जिला संसाधन व्यक्ति नियुक्त कराया गया है। वे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनावा में और बैंक रे लोन स्वीकृत करावा में मुफ्त मदद करे। और देखो जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन री जांच रे केड़े बैंक लोन और सब्सिडी रे वास्ते भेज दियो जावे। अगर सही पायो गयो तो अपने सब्सिडी भी मिल जावे सा।
0: तो देखो सा यह अति बढ़िया योजना है कि भाई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्होंने योजना आप तो सबने अपने कार्यक्रम में माध्यम यो इस कहूँगा कि योजना में भाग लो, आप हर परिवार एक सदस्य जुड़ो और निश्चित रूप में योजना रो फायदो उठाओ सा।
1: और फायदो आपा भी उठावा। बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाइन।
0: बिल्कुल सा।

0: तो देखो सही बढ़िया सो राजस्थानी गीत आपा सुनाए और गीत तो सुना ही रहा लारे। देखो अभी जानकारी करावा कि मानसून रो मौसम आई गयो है, तो अणी मौसम में देखो बारिश रे कारण जमीन रे नीचे मणिया तका जो बिल है दरार है मणाम पानी भर जावे। जने हूँ कहिए सांप और जो दूजा विषैला सरीसृप सुरक्षित जगह री तलाश में बाहर निकले, तो मानसून रे दौरान विषैला सरीसृप बचाव किसरे करना है यो बतावा सा।
1: बिल्कुल सही बात की सा। और देखो अणी मौसम में इंसान और सरीसृप रो सामनो वेणो री समस्या ज़्यादा बढ़े और आप देखो संभावना भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जावे। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता रखने आपने और अपने परिवार ने सुरक्षित रख सका सा।
0: मानसून रे दौरान देखो विषैला सरीसृप बचाव रा खास उपाय री बात करा तो देखो घर और अड़े भड़े री साफ सफाई सबू पहलो कदम है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो घर के आसपास उगी थकी लंबी घास वेगी झाड़ियाँ वेगी जंगली पौधारी नियमित छटाई करनी है। और देखो सांपारे छिपारे वाते घना और अंधेरा स्थान बनाने पसंद हुए तो अणी वात रो आपने विशेष रूप ध्यान रखना कि जटे घना और अंधेरा जैसी आपरे घर में ऐसी की जगह वे तो वटे वणी चीज ने वटे कटे सामान पड़िया थका हुआ पुराना या कहीं वे तो हटाई देना ताकि वणी मैंने ये ऐसा जीव जंतु नहीं आई सके सब।
0: सही कह रहा हो सा, जिस तरह पुराना कबाड़ ईंटा लकड़ी रा ढेर सूखा पत्ता ये सब हटाना है सरी सरपारे वास्ते आदर्श छिपा री जगह है। गर्रे अड़े बड़े गीला या सूखा कचरो इकट्ठो नहीं वेवा देनो है। कचरा देखो चूहा ने आकर्षित करे और चूहा सांपारो खास भोजन है, जटे ऊंदरा वेगा बटे देखो सांप अपने आप आएगा सा।
1: बिल्कुल सा। और घर ने देखो कहीं आना सांपों सुरक्षित बनाना है और डराना और आप देखो जो सुरंगा वे बनाने बंद कर देना। मुख्य दरवाजा रे नीचे खाली जगह खिड़कियां और जालियां ने छोड़ देनी और दीवारा ने दरारा ने तुरंत ठीक करना है ऐसा।
0: और देखो सांप बहुत छोटा छोटा 6-2 महीने रेंग सके, नालियाँ पे जाली लगानी है, बाथरूम रसोई और वास वेसिम डी निकास नालियाँ पे महीन लोहारी जाली लगानी है। अक्सर देखो सांप पानी रे रास्ता पाइप में बहता तका कमोड या बचे सिंक में पहुंच सके सा।
1: बिल्कुल सा। और

0: दरवाजा नीचे आप देखोगे डोर सील लगानी है, और खास तौर रात्रि समय में मुख्य दरवाजा नीचे गेप और फिक्सर या भारी कपड़ों लगे रेंगवा वाला जीव ताकि अंदर नहीं आई सके सा।
1: रात्रि टाइम पे विशेष सावधानी बरतनी है, टॉर्च या फ्लैश लाइट रो प्रयोग करना है ताकि अंधारा में देखो आप देख सका। रात में घर उबारने निकलती टाइम पे हमेशा बंद जूता यानी कि बूट पहनना है, जमीन पे सोवम बचना है। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी जो इलाका है वटे आपने यो ध्यान रखना है। बिस्तर पर जावा पहली चादर और तकिया ने हाउ तरीका जाड़ लेना है ऐसा।
0: बिल्कुल साहब, और देखो बाहरी गतिविधियां और खेता पे काम करता टाइम तो कहीं आपने ज़्यादा सावधानी रखनी है। आप देखो पेरारी जो आहट है वह पैदा करनी, और यदि आप कहीं ऊंचा घास वाला इलाका में या खेत में जा रहा हो तो अपने हाथ में एक लंबी लाठी यानी कि डंडो रखनो और चलता समय लाठी ने जमीन पे पटक तो रहनो। वणियों कही वे के सांप इंसानी री आहट और जमीन पे वे वाला कंपनों कही ये दूर भाग जावे साहब।
1: वना देखिया कणी खोखला पेड़ा तना पत्थर रे वच्चे री जगह आया पचे कटे गहरा खाड़ा में हाथ नी नाकनो है। बाण ने रख्या तका जूता पहनती वक्त पेला वना ने उल्टो करने हाउ तरीकों झटक लेना है। सांप अक्सर देखो गरम और संकीर्ण जगह जिस तरह की जूता रे महीने जाइने बैठ जावे सा।
0: बिल्कुल सा, देखो कुछ कुछ सावधानियां हैं। अचानक सरीसृप अप नजर आवे तो घबराना नहीं है और न ही आपने चिल्लाना है। कम कम देखो 6-8 फीट री सुरक्षित दूरी बनाई लेनी, और जीव ने मारनो पकड़नो या बिने डंडों छेड़वारी कोशिश नहीं करनी। स्थानीय जो स्नेक कैचर वे यानी कि सांप ने पकड़वा वाला जो ये लोग बाग वे और सर्प मित्र जिन्हें के वन विभाग री टीम भी वेणी मैंने विने आप तुरंत सूचित करो ताकि वे सुरक्षित रेस्क्यू करने जंगल में वना ने छोड़ सके सा।
1: तो स्वयं भी सुरक्षित रहवा और दूसरा ने भी जागरूक करा। और देखो सुरक्षित रांगा तो प्रसन्न रांगा, और प्रसन्न रांगा तो गीत संगीत हुणांगा।
0: जी सर,
1: सुनावा बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
0: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: तो पेरा भाई देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाया और जटे कदी दिवस उत्सव है तो वनडी जानकारी भी आपा करावा। तो आज देखो अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस देखो हर साल आज रे दिन यानी 26 जून ने दुनिया भर में मनाया जावे। अंडो खास उद्देश्य समाज ने नशा रे दुष्प्रभाव रे प्रति जागरूक करनो और नशीली दवा रे अवैध व्यापार ने रोक लगानो है।
1: बिल्कुल सा। और देखो आज रो दन यानी कि चीन में देखो किंग जो हा राजवंश रे दौरान कई लिन जेस्कू द्वारा अफीम रे व्यापार रे उन्मूलन यानी कि लिन सियान अफीम विनाशी स्मृति में नहीं चुनियो गयो दन है, जो कि नस्ली दवा रे खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम हो सा।
0: अंडो उद्देश्य एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समाज रो निर्माण करना है जो कि नशीली दवा रे दुरुपयोग पूरी तरह मुक्त वे वैसा।
1: बिल्कुल सा। और देखो अणि दिवस रो खास तौर मुख्य उद्देश्य री बात करा आज रो दन जो है मनावर तो वो यो है कि भाई युवा वे गया बच्चा वे गया और समाज रा हर वर्ग ने नशों दूर रखनो, क्योंकि देखो कई नशों शारीरिक मानसिक और आर्थिक नुकसानों गणो हारो आपने प्रभावित करे सा।
0: और अंडे प्रति देखो जागरूकता वेगा ताकि ये सब दूर रह सके और नशीला पदार्थ रे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तस्करी और अंडे अवैध व्यापार ने रोकवारे वास्ते सरकार रे बच्चे जो है समन्वय बढ़ानो भी ऐसा।
1: बिल्कुल सा। और देखो नशा कर रहा था वणा लोगा ने अपराधी नजरों देखवा रहे बजाय वणा ने एक मरीज के रूप में देखना चाहे और वणा रे इलाज करनो है और पुनर्वास वणा रो जो वे वणी पे जोर देनो है सा।
0: नशीले पदार्थ रे सेवन रे पाछे कई सामाजिक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कारण में जन्मे। खास कारण की बात करा तो देखो मानसिक तनाव और डिप्रेशन, आधुनिक जीवन शैली में देखो असफलता वे, करियर री चिंता वे, अकेलापन रे कारण लोग जो है अस्थायी राहत रे वास्ते नशा रो सहारो ले वे।
1: बिल्कुल सा। और देखो कि ये प्रियर प्रेशर यानी कि दोस्तारो दबाव भी अणि आदत ने आजकल घणो बढ़ावा दे रो। कई बार युवा अपने दोस्तों रे बहकाव में आईने और कूल दिखवारी चाह में आप देखो बराबर नशो कर रहा है और वे बाद में

0: जैनन वाली ऐसी आदत पड़ जावे जो कि छूटे नहीं छूटे सा।
1: पारिवारिक माहौल भी अंडो जिम्मेदार है कि अगर परिवार में कोई बड़ो सदस्य नशो कर रहे है तो टाबर में वंडी लत लाग वाली संभावना बहुत बढ़ जावे सा। और देखो अवैध रूप बिकवा वाली दवा नशीली पदार्थ कई जगह पे आसानी मिल रहा है जने युवा तक अनारी पहुँच वेरी ऐसा।
0: बिल्कुल सा। और देखो नशो एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा समाज ने खोखलो कर रहे है। आप देखो नस्ली पदार्थों अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस वेगी कैंसर वेगी दिल रो दौरो वेगियो और घनी हारी गंभीर बीमारियों खतरो दन बदन बढ़तो तक हो जाई रो ऐसा।
1: और नशा बचाव और समाधान उपाय री बात करा देखो स्कूल कॉलेज में नियमित काउंसलिंग मेरा सत्र वेना चावे नशारा आदि व्यक्ति रो बहिष्कार करवारे बजाय विने सही इलाज और मानसिक सहयोग देनो चावे सा।
0: बिल्कुल सा। अब देखो अणियो आप किस तरह बचा और अंडे समाधान रो उपाय करा तो आप देखो नशारी समस्याओं निपटा रहा वाते सरकार घना हरा कदम उठाई रहा है जन में युवाओं ने नशा रे प्रति जागरूक करवाए लाला रे नशा मुक्त भारत अभियान यानी कि अपने देश में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एजेंसी नशीला पदार्थ ने अवैध तस्करी और दवाओं रे दुरुपयोग ने रोकवा रहे वाते 24 घंटे एक हेल्पलाइन काम कर रही है सा।
1: और देखो सरकार द्वारा नशा मुक्ति रे वास्ते टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1444 जारी की दो तक है जट कोई भी परामर्श और मदद ले सके।

0: देखो यो बढ़िया सो रेलगाड़ी रो गीत हुणियो आपां। रेलगाड़ी चाल रही है और देखो रेलगाड़ी रे लारे जिया घड़ी भी चाल रही है, तो घड़ी आड़ी देखा तो अपना टाइम भी वे गयो। तो चाला सा जय जवान
1: जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त चंचल। श्रोताओं, आज यश जौहर भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज फिल्म निर्माता और मशहूर प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक, उनकी पुण्यतिथि है। ये गीत उन्हीं को समर्पित।

साल 1976 में यश जौहर ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस की नींव रखी। उनकी कंपनी द्वारा निर्मित पहली फिल्म दोस्ताना 1980 में आई थी, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने दुनिया, अग्निपथ और गुमराह जैसी फिल्में बनाई।

0: यश जौहर का जन्म 6 सितंबर 1929 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। अपनी दादी के प्रोत्साहन से वे मुंबई आए और अपना करियर एक फोटोग्राफर के रूप में शुरू किया। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने सुनील दत्त की कंपनी अजंता आर्ट्स और देवानंद की नवकेतन फिल्म्स के साथ काम किया। इस दौरान उन्होंने गाइड, ज्वेल थीफ और प्रेम पुजारी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों के निर्माण में सहयोग दिया।
1: मेरे हीरो,
2: ये क्या करती?
1: मेरे जानो,
2: मुझे डर लगती है।
1: मेरे बाला,
2: तेरा भाई हमको मारती।
0: ये फिल्म है अग्निपथ। एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजें हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
2: इतने सारे नाम,
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
2: हाँ

में हुआ। उनकी परवरिश शिमला, कुछ समय के लिए लाहौर और फिर दिल्ली में हुई। यश का मुंबई आना सिर्फ और सिर्फ उनकी दादी की बदौलत मुमकिन हुआ। उनकी दादी हमेशा उनसे कहा करती थी कि तू यहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए जन्मा है।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे यश जौहर की दादी जी की। उन्होंने ही उन्हें घर से भागकर मुंबई आने की सलाह दी। जी हाँ, दादी ने अपने कुछ गहने और केश देकर पोते को घर से भगाया था। ऐसा करने से हफ्ता भर पहले ही उन्होंने घर में माहौल बना दिया था कि उनके पैसे चोर ले गए हैं। इस तरह यश चोपड़ा मुंबई पहुंचे। क्षमा कीजिए, यश जौहर मुंबई पहुंचे।

श्रोताओं, कुछ फिल्मों के गीत हम आपको वो भी सुनवा रहे हैं जिसमें उन्होंने फिल्मों के निर्माण में सहयोग दिया। हम आज बात कर रहे हैं यश जौहर की।

एक और फिल्म जिसके निर्माण में सहयोग दिया था यश जौहर ने, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

यश जौहर को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बेहद नरम और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। 1960 से लेकर 2004 तक फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनका गहरा और खुशनुमा रिश्ता था। जून 2004 को मुंबई में कैंसर के कारण यश जौहर का निधन हो गया। अपने अंतिम समय में वे फिल्म कल हो ना हो के निर्माण में व्यस्त थे। श्रोताओं, आज हम उन्हें यश जौहर जी को उनकी पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने। नमस्कार। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं पहले समाचार संध्या, फिर 9 न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26,00,000 किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकल

0: कर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के अध्यक्ष

0: अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के दो जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी।

0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589.

0: quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत में चुनिंदा गजलें। ये गजल है पंकज उदास की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में चुनिंदा गजलें।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में चुनिंदा गजलें, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। अगली गजल अशोक खोसला की आवाज में।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में रागश्री। कलाकार हैं M. वेंकटेश कुमार।

रागश्री हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन और गंभीर रागों में से एक। ये पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है और इसे संध्याकाल सूर्यास्त के समय में गाया जाने वाला प्रमुख संधि प्रकाश राग माना जाता है। इसकी प्रकृति भक्तिपूर्ण, आध्यात्मिक और एकाग्रता को गहरा करने वाली है।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज आपने सुनी रागश्री। कलाकार थे एम वेंकटेश कुमार। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत को लेकर हाजिर है आपके रेडियो दोस्त चंचल। आप बने रहिएगा हमारे साथ बहुत ही सुंदर प्यारे से गीत सुनने के लिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। अगला गीत हमने जो चुना है, फिल्म का नाम सिर्फ तुम। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजें हैं। धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आइए अब सुनते हैं बेताब फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें हैं। धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बेटा फिल्म का ये गीत है, अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाज़ें, तर्ज अमर उत्पल की है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। अगला गीत साजन फिल्म से हमने चुना है। अलका याग्निक की आवाजें हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। आवाजें दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए sales@gmail.com यानी sales@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: श्रोता, आइए अब सुनते हैं दीवाना फिल्म का गीत। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजें हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

श्रोताओं, अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं कोयला फिल्म से उदित नारायण और साथियों की आवाजें हैं। धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

एक आखिरी गीत और हम सुनवा रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ है, सलीम सुलेमान का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने। नमस्कार। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, जहां से सुनेंगे पहले समाचार हिंदी में और 11:10 पर होंगे इंग्लिश न्यूज़।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।